0: The Commonwealth Games. नमस्कार, हम आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत करना चाहते हैं ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सातवें दिन के अपडेट्स के साथ। 10 खेलों वाले छोटे फॉर्मेट में उतरते हुए 122 सदस्यों वाली भारतीय टीम के सामने एक अनोखी और मुश्किल चुनौती है। ग्लासगो ने कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग और टेबल टेनिस जैसे पारंपरिक खेलों को हटा दिया, जिनमें भारत का दबदबा रहा है। और बर्मिंगहम 2022 में भारत को मिले कुल पदकों में से लगभग आधे पदक इन्हीं खेलों में आए थे। फिर भी इस साल भारत का नजरिया निडर और नए जोश वाला है। खेलों की बदली हुई सूची से निराश होने के बजाय भारतीय खिलाड़ी इन गेम्स को अपनी काबिलियत साबित करने के एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। पैरा एथलेटिक्स में शानदार डबल पोडियम फिनिश से लेकर ट्रैक पर लंबी दूरी की दौड़ में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल तक टीम इंडिया दुनिया को एक जबरदस्त संदेश दे रही है।
1: भारोत्तोलन में दो दिन पहले तक हर दिन पदक आ रहे थे। भारतीय झोली भरने के काम का वजन भी उन्होंने रखा था। हालांकि पिछले बर्मिंगहम खेलों के 3 स्वर्ण सहित 10 पदकों की बराबरी तो इस बार नहीं हो पाएगी, लेकिन अब पदकों की जिम्मेदारी मुक्केबाजों ने उठा ली है। एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड दोनों में ही अब भारतीय मजबूत दावेदारी ठोकने में सक्षम दिख रहे हैं, तो तैराकी और बोल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिशें जारी हैं। और पैरा खिलाड़ियों के जज्बे को तो सलाम है हमेशा ही। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का सातवां दिन और सारे विवरण के साथ उपस्थित हैं हम। भारत के बेस्ट लॉन्ग जंपर शिशंकर मुरली की कहानी साहस, संकल्प और इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। 1.5 साल पहले जिसका करियर खत्म होने के कगार पे था, वो 74 देशों के खेल मेले में अपनी स्पर्धा में भारत के लिए अपना लगातार दूसरा रजत पदक ले आया 8.09 मीटर की कूद के साथ। अपने दूसरे प्रयास में ही उन्होंने ये दूरी नापी। इसके बाद के दो प्रयास फाउल हो गए और अंतिम प्रयास में स्वर्ण पदक पाने के लिए उन्हें कम से कम 8.15 मीटर की दूरी पार करनी थी, लेकिन उसे वो नहीं कर सके। अपनी दौड़ से पहले अपने खास अंदाज में खुद में जोश भरने के लिए उन्होंने समर्थकों को इशारा किया ताली बजाने का और कूद की शुरुआत की। केरल के शिशंकर के पिता एस मुरली राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं और उनके कोच हैं। उनकी हर चीज का वो पूरे समर्पण के साथ ध्यान रखते हैं।
2: एक्चुअली ऑलवेज आई एम अ कोच एंड फादर। वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स ओनली व्हेनेवर वी मीट एंड ऑलवेज वी प्लान मीट।
1: हरियाणा में जन्मी मनप्रीत कौर का खेल जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 5 साल तक प्रतिबंध झेलने के बाद वो सम्मान वापस कमाने के लिए कृत संकल्प होकर फील्ड में आई और बहुत कुछ हासिल कर लिया। ग्लासगो में भी देश के लिए मेडल पाने के बिल्कुल करीब तक पहुंच गईं। 5वें प्रयास में 17.49 मीटर फेंका, लेकिन 4थे स्थान पर रह गईं। पुरुषों के शॉर्ट पट में तेजिंदर सिंह तूर का कहना ही क्या। 2 बार के एशियाई चैंपियन तूर ने आसानी के साथ 20 मीटर का ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग मार्क पार कर लिया। देश में एथलेटिक्स के बढ़ते स्वरूप पर उनका कहना था।
3: नीरज ने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, तब से हमारे जो इंडियन एथलीट्स है अभी सब अपने अपने इवेंट में बेस्ट कर मतलब कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट करें वर्ल्ड लेवल पर। मुझे लगता है आने वाले सालों में अच्छा करेंगे।
1: तो उनके साथी समरदीप सिंह गिल तूर पाजी की छाया से निकलकर अपना स्थान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 19.95 मीटर के साथ वे भी क्वालिफाई कर गए। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में कुल मिलाकर 7वें स्थान पर रहे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, तो 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी भी 7वें और 8वें बेस्ट टाइम निकालकर क्वालिफाई करने में सफल रहे। पारुल चौधरी ने पिछले एशियाई खेलों में 2 दिन में 2 पदक जीते थे, 3000 मीटर स्टीपल चेस और 5000 मीटर में। 3000 मीटर स्टीपल चेस में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन ये दिन उनका नहीं था। वो 5वें स्थान पर रहीं 9:26.75 सेकंड्स के साथ।
0: The stunning 1-2 finish marked a watershed moment in Indian para-athletics history, etching Dilip Mahadugavit and Mohammad Basil into the record books as they swept the podium on the grand Commonwealth Games stage. Dilip's historic gold was secured with a blistering Games record time of 10.71 seconds, a milestone achieved by exploding off the blocks and maintaining a relentless lead to rewrite the competition's record books. By turning the sprint track into a showcase of absolute dominance, capped by that new standard, the duo not only elevated India's standing in international

0: national short distance para sports, but also delivered a powerful statement of intent for the nation's rising sprinting pedigree on the global map. Dilip Mahadu Gawit and Mohammed Basil delivered a breathtaking 1-2 finish for India in the T47 100 meter finals at the Commonwealth Games, with Gawit surging over the final 30 meters to secure the gold medal in a games record time of 10.71 seconds, while Basil stormed home in 10.83 seconds to claim a brilliant silver ahead of England's Kevin Santos. Dilip Mahadu Gawit, a name who has etched himself in the record books of history. In men's discus throw F42-44, F61-64, Devendra Kumar and Sagar Thayat represented India in para-athletics finals. Sagar Thayat finished in 6th position with a top effort of 46.35 meters, while Devendra Kumar was placed close behind, recording a throw of 48.20 meters.
1: भारतीय बॉक्सिंग के लिए ग्लासगो 2026 का सातवां दिन एक कभी न भूलने वाली उपलब्धि लेकर आया। 6 मुक्केबाज विभिन्न भार वर्गों में रिंग में उतरे और सभी 6 ने जीत हासिल करके पदक पक्के कर लिए। यकीनन एक अविस्मरणीय दिन जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। शुरुआत की भिवानी की मुक्केबाजी फैक्ट्री की एक और पौध साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में। साक्षी ने नॉर्दर्न आयरलैंड की काइटलिन फ्रेयर्स को ये एहसास करा दिया कि क्यों उन्हें जायंट किलर कहा जाता है। एक तरफा बाउट रही 5-0 से साक्षी सेमीफाइनल में। दूसरी बाउट में थी राजस्थान से आने वाली पहली इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी। न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन से कांटे की फाइट हुई। दूसरे राउंड में अरुंधति ने बढ़िया प्रहार किए और विपक्षी ने एक पेनल्टी बिखाई। निर्णय एकमत नहीं रहा और 3-1 से अरुंधति के पक्ष में गया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैं मेरी जीत को मेरे छोटे भाई को डेडिकेट करना चाहूंगी। और आज आसान तो नहीं था, बट अच्छा रिजल्ट आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आए तो इसीलिए है कि गोल्ड लेना है, ये तो बस एक सीढ़ी थी।
1: और अब बारी थी लड़कों की। भिवानी के ही सचिन सिवाच के सामने बोत्सवाना के ट्रेजर मॉर्गी थे। वो कोई प्रतिरोध खड़ा नहीं कर सके। तीनों राउंड में सचिन के मुक्के ही मुक्के लगातार दिखते रहे रिंग में और 5-0 से एक और निर्णय भारत के पक्ष में। तो अब उत्साहित अंकुश पर भला कौन अंकुश लगाता। सेशल्स के जेड मिकॉक तो पूरी कोशिश करके भी नहीं लगा सके। अंकुश के मुक्कों के आगे बेबस हो गए और सर्वसम्मति से एक और जीत 5-0 के साथ।
3: The winner in the red corner representing India, Ankush.
1: 90 किलो में नरेंद्र बेरवाल भी हरियाणा से ही हैं और उन्होंने हैवीवेट वर्ग में भी भारतीय परचम फहरा दिया। समोआ के माइकल सेको की कड़ी चुनौती थी उनके सामने, लेकिन आखिरकार वो इसको पार करने में सफल रहे और 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से जीत गए। पिछले खेलों की कांस्य पदकधारी जैस्मिन लंबोरिया लगातार दूसरे खेलों में सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंग्लैंड की एलिज क्लीन को एक बेहद कड़े मुकाबले में उन्होंने मात दी। बॉक्सिंग में अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन 2022 बर्मिंघम में रहा है। 3 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक। पदकों के मामले में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि 10 पदक पक्के हो गए हैं। और इस उपलब्धि पर ग्लासगो में मौजूद बॉक्सिंग के राष्ट्रीय कोच सीए कुटप्पा ने आकाशवाणी को ये खास संदेश भेजा।
4: Narendra, who put up a strong performance against the 120 kg boxer. We still have 2 more steps to reach the gold medal, and the entire team is fully prepared and determined to achieve that goal. A special thanks to all the Indian team members, camp coaches, and supporting staff. This performance is the result of everyone's hard work, dedication, and teamwork. We are also grateful to the constant support and encouragement from BFI, President Sri Ajay Singh, the Secretary General, Executive Director Arun Malik, and all the members of the Boxing Federation of India. Thank you everyone for support. Jai Hind, Jai Bharat.
0: India's sole weightlifter in action, Sanjana, suffered a disappointment after recording a did-not finish in the women's 77-kilogram category. She was unable to settle underneath the bar on any of her 3 snatch attempts, including a final effort at 94-kilogram, resulting in an early exit from the tournament. Sanjana shot to prominence at the 2026 Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, winning 3 bronze medals with a combined total lift of 220 kilograms, which included 96 kilograms in snatch snatch and 124 kilogram clean and jerk. She was considered a strong silver medal contender, but unfortunately bowed out with a did not finish after failing all three of her snatch attempts at 94 kilograms. Despite the setback, the Indian weightlifting team has concluded the majority of its heavy campaigns with a highly successful haul of 7 medals, 1 gold, 5 silver and 1 bronze. And we have some bright good news for all the fans of lawn bowls. At the 2026 Commonwealth Games, India's men's pair lawn bowls team secured a strategic second successive group stage win by defeating Namibia, with Navneet Singh and Dinesh Kumar winning the first set 5-3 and the second set 6-3. From one good news to another, Indian lawn bowler Nayan Moni Sekia bounced back to defeat Carolyn Whitehead of the Isle of Man in a round 2 match of the women's single sectional play Section C at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Following a 0-2 loss to Wales Amy Williams in round 1, this victory kept Sekia's campaign alive in Section C as she headed into the subsequent sectional rounds. Let's now have a look at how our para swimmers fared on day 7 of the ongoing Commonwealth Games 2026. No medals were won by the Indian para swimmers on day 7 of the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Competitions in the pool concluded with two Indian athletes qualifying for and racing in the men's 50-meter freestyle S7 final. These two athletes were Chaitanya Vishwas Kulkarni and Suyash Narayan Jadhav. Chaitanya Vishwas Kulkarni finished 4th place in the men's 50-meter freestyle S7 final, clocking a time of 32.77 seconds, while Suyash Narayan Jadhav finished 6th place in the same final event with a time of 35.35 seconds. The gold medal in the final was secured by South Africa's Christian Seri, who clocked 28.45 seconds to establish a new games record also. Overall, the Indian para swimmers successfully secured multiple final appearances across the competition layout but missed out on reaching podium placements.
1: आज एथलेटिक्स में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा अपने फैंस के सामने होंगे और साथ में रोहित यादव और यशवीर सिंह भी। डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर अपने अभियान की शुरुआत करेंगे और ट्रिपल जंप में सिल्वा प्रभु और प्रवीण चित्रावल उतरेंगे। 400 मीटर सेमीफाइनल में विशाल टीके होंगे और शॉर्ट पट में स्टार तेजिंदर सिंह तूर और उनके जोड़ीदार समरदीप सिंह गिल फाइनल में होंगे। 200 मीटर के सेमीफाइनल में अनिमेश कुजूर भागेंगे और महिलाओं के डिस्कस थ्रो में निधि रानी और सीमा होंगी मैदान पर। 5000 मीटर में पारुल चौधरी पदक की खोज में ट्रैक पर उतरेंगी।
0: यू विल गेट टू विटनेस पैरा ट्रैक साइकिलिंग इन विच वुमेन C4 C5 4000 मीटर्स इंडिविजुअल परसूट इवेंट विल बी हेल्ड। लीशा दास फ्रॉम इंडिया विल बी टेकिंग पार्ट इन द क्वालिफाइंग राउंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इन ट्रैक साइकिलिंग मेंस टीम स्प्रिंट इवेंट विल बी कंडक्टेड इन विच रोजीत सिंह यांगलिम, डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, जेम्स सिंह विल बी पार्टिसिपेटिंग। इन वेटलिफ्टिंग यू विल गेट टू विटनेस वुमेन 86 kg plus category event in which Martina Devi Maibam will be representing India in the final round. In para track cycling, women's C4 C5 4000 meters individual pursuit event, Lisha Das, who is representing India. In track cycling, men's team sprint event, these athletes include Rojit Singh, David Beckham, Ronaldo Singh, and Jemsh Singh. In weightlifting, men's 110 kg category event shall also be happening, in which Lovepreet Singh from India will be representing our country in the finals.
5: Australia has surpassed a century of medals, has total of 103 medals and is at the top of the tally. Canada is at number 2 and England at number 3. India with 3 gold, 9 silver and 3 bronze is placed at number 8.
1: आज की रिपोर्ट बस यहीं तक। संपादक स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और साथ ही अपनी साथी एंकर साक्षी मंडवाल के साथ मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा। कल इसी समय फिर मिलना मत भूलिएगा। नमस्कार।
0: The Commonwealth Games.
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है जिस तरह से स्थानीय मौसम विभाग ने सूचना दी है कि आज भी सारा दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें अगर गुजरे कल की, तो अधिकतम तापमान 31.3 यानी कि सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा और न्यूनतम तापमान 26.9 यानी कि सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक रहा। उच्च आर्द्रता 97% और निम्न आर्द्रता 76% रही। वर्षा 3.5 मिलीमीटर रही। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, जहां ढेर सारी जानकारियों के साथ होते हैं आपके लिए बेहतरीन वाले गीत। रुक करते हैं अगले गीत का, सुनते हैं कुमार शानू की आवाज़।

치킨 드립니다. बात करें अगर आज के दिन की तो आज का दिन यानी कि 30 जुलाई का दिन मनाया जाता है विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य मानव तस्करी जैसी गंभीर और अमानवीय समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत बनाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा। लोगों को सुरक्षित रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, संदिग्ध गतिविधियों की समय पर सूचना देना तथा पीड़ितों के पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था करना शामिल है। बात करें अगर आज के दिन जन्मे लोगों की तो भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नवीन चावला का जन्म आज ही के दिन हुआ था वर्ष 1945 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1927 में। 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतिज्ञ और सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद पांडे का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1923 में। अर्टा बल्लभा मोहंती, उड़िया साहित्यकार, भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया। आपका जन्म हुआ था वर्ष 1887 में आज ही के दिन। भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1886 में। सुप्रसिद्ध

0: क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1882 में। बात करें बॉलीवुड के हवाले से तो वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जन्म हुआ था अभिनेत्री मंदाकिनी का, जिन्हें राज कपूर के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनकी पहली प्रमुख भूमिका के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। और साथ ही साथ आज के दिन एक नहीं बल्कि दो सोनू के नाम है, सोनू निगम और सोनू सूद दोनों ही का जन्म हुआ 30 जुलाई 1973 को।
1: आज के दिन
0: बजकर 22 मिनट और 26 सेकंड कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप पूजा है आपके साथ, बना रहेगा हमारा साथ पूरे 11 बजे तक।

0: बात जब हो रही है प्यार की तो बता दीजिए बारिश कितनी प्यारी है आपको, कितना करते हैं आप प्यार बारिश की बूंदों से। बारिश को देखकर क्या आपके मन का मोर भी नाचने लगता है, आप भी बेचैन हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं बारिश में भींगने के लिए, या कि फिर आपको लगता है बस कहीं से छांव मिले और मैं खुद को बचा लूं इस बारिश की बूंदों से। कैसे होते हैं बारिश को देखकर आपके भाव, जुड़ जाइए दिल से दिल तक। 2213-1341 है हमारा नंबर। और जब हम बात करते हैं बारिश की तो फिर बात होती है बारिश वाले जूतों की। और ये जो बारिश वाले जूते हैं ये हमारे आम जूतों से थोड़ा अधिक हमारे पैरों को प्यार करते हैं, अपनी निशानियां कुछ अधिक ही छोड़ जाते हैं हमारे पैरों पे। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: ये नुस्खा है आपके पैरों को शो बाइट से बचाने का। एक साल कागज में लपेट कर जूते की अलमारी में रखा हुआ बारिश का वो जूता, जब आप निकालते हैं बारिश के मौसम में और पहली बार उसमें अपने पैर डालते हैं तो कई बार आपके पैरों पर वो निशान दे जाता है, शू बाइट कहते हैं जिसे आप। तो बस एक बहुत नन्हा सा छोटा सा नुस्खा है, अपने पैरों को बिल्कुल मत छेड़िए। अपने पैरों की देखभाल आप वैसे ही कीजिए जैसे सामान्य दिनों में किया करते हैं। जूते को पहनने से पहले जूते के हर उस हिस्से पर जो विशेष रूप से किनारे हैं और आपके पैरों पर रगड़ खाते हैं उस पर लगा दीजिए वैसलीन, बोरोलीन, कोई भी चिकनी सी क्रीम और फिर देखिए कैसे वो जूते आपके पैरों को बहुत ही नरमी के साथ, बहुत ही नज़ाकत के साथ, मखमली एहसास के साथ गुदगुदाएंगे, सहलाएंगे, लेकिन काटने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आजमाया नुस्खा है, आजमा कर देखिए
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: तो चलिए रुक करते हैं प्रेम जाल का।

0: जाल में उलझे हुए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं दिल से दिल तक। कौन है हमारे साथ और कहां से? स्वागत है आपका कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में।
1: गुड मॉर्निंग पूजा जी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन और कहां से?
1: मुनीरुद्दीन बोल रहा हूँ, दक्षिण सांकरेल हावड़ा से।
0: स्वागत है आपका। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी बात आभा के बाबा से हो रही है?
1: ऑफ कोर्स।
0: हाँ तो बताइए क्या कहना है आपको विषय पर?
1: एट फर्स्ट आई सेज दैट साइड बाय साइड और माइल्स अपार्ट साइड बाय

0: Decide or miles apart. See, best friend are always connected by the heart.
1: Wow.
0: As you are favorite RJ, I am so lucky to call you.
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एकदम दिल से दिल तक का कनेक्शन है। तो बताइए विषय पर क्या कहना है आपको, कुछ कहना है? जब बारिश का मौसम होता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं धरती पर, तो आप सिर्फ उन्हें देखना पसंद करते हैं ना, उनमें भींग जाना भी पसंद करते हैं?
0: देखिए पूजा जी, देखते तो सभी है लेकिन भीगता बहुत कम है, इसीलिए मैं कम ही दल में पड़ता हूँ। बारिश में जो कादे माटे से फुटबॉल खेल होता है वो हमारे लिए बहुत फेवरेट है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। मिट्टी से जुड़े रहना, पानी से जुड़े रहना, धरती से जुड़े रहना, यही है जिंदगी। और सोचिए अगर झीलों का शहर हो और वहां पर बारिश हो रही हो तो कैसा महसूस करेंगे आप?

0: निकलने का समय हो, दिल कह रहा हो आज भींग लें और उसी समय हो जाए बारिश। वाह क्या बात है, सोने पे सुहागा। फिलहाल हमारे साथ हैं शौबिक कस्बा से। स्वागत है आपका शौबिक नॉनस्टॉप गपशप में।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, बताइए कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या चल रहा है और बारिश के क्या हालात हैं?
1: अभी तो मैं घर में हूँ, बाहर में बारिश हो रहे हैं। हाँ दीदी, और चल रहा है तो बारिश भी चल रहा है, और कुछ टाइम के बाद मैं ऑफिस में जाने के लिए मैं निकलूंगा। दीदी आपने जो बोला ना, इस टाइम में बारिश हो रहा है तो बहुत दिक्कत होता है हम लोग का। दीदी आपने जो टॉपिक दिया है जो बारिश में भीगने के बा देखने के कौन सी मजा है, मैं बोलूंगा हम लोग जब बारिश में जब भीजता है ना, बहुत अच्छा लगता है। बारिश में हम लोग निकल जाए बा टेरिस में जाए तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन के बाद जब बारिश होता है ना, गर्मी के बाद बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा मुझे ये बताइए, शौबिक, बारिश में भीगना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश में भीगने के बाद जब वो सर्दी लग जाती है और अच्छी अच्छी होता है, तब आपको कैसा लगता है?
1: एक मैं छोटा सा एक जो स्टोरी मैं बोलूंगा वो है, एक बार मैं बहुत मैं बारिश में भीग रहा था। मेरे जो घर में जो परिवार जो है वो बोल रहा था बारिश में मत भीजो, ये सीजन के पहली बारिश है, सर्दी सर्दी लग जाएगा। उसके बाद दीदी मुझको डेफिनेटली सर्दी लग गया था, काशी काशी बुखार हो रहा था, बहुत दिक्कत हो गया था। मेरी गला में बहुत कोई एक प्रॉब्लम हो रहा था, काशी काशी हो रहा था, बहुत दिक्कत। उसके साथ फीवर भी आ गया था, वो 3-4 दिन में भूगा था दीदी।
0: लेकिन तो, क्या उसके बाद जो भींगने की इच्छा थी उसमें कोई कमी आई?
1: नहीं नहीं दीदी,
0: बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ये जो बारिश में भींगने के बाद थोड़ी थोड़ी सी अच्छी होती है, वो भी अच्छी ही लगती है।

जुड़ चुके हैं हमसे न्यू टाउन से रोहिणी सिन्हा। स्वागत है आपका रोहिणी कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। आप जुड़ चुके हैं दिल से दिल तक। लगता है रोहिणी से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन रोहिणी पहली ऐसी महिला मुझे मिली जिन्होंने कहा उन्हें बारिश में भीगना बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो वो बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करती हैं।

जी हाँ बिल्कुल, प्यार था, प्यार है और प्यार बना रहेगा, लेकिन बंधे हुए हैं हम समय के साथ और घड़ी की सुइयां कह रही हैं बस आज के लिए सफर इतना ही। होगी आपसे मुलाकात कल सुबह एक बार फिर इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जुड़े रहें दिल से दिल तक।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तीन कदर का कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रिंकू और आप मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे क्योंकि तीन का तड़का है ही ऐसा कार्यक्रम। दोस्तों, तीन के तड़के में हम तड़का लगाएंगे गीतों का, और ऐसे गीतों का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए देरी ना करते हुए और बिल्कुल भी आपके इंतजार को रूबरू कराते हैं असरार और अख्तर चंचल की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की उलझनों को थोड़ा सा दरकरार कीजिए, क्योंकि दोपहर जो है वो ढल रही है। अब थोड़ा सा खुद को प्यार कीजिए दोस्तों। वो वैसे कहते हैं कि बिना तड़के के खाने में स्वाद नहीं आता और बिना संगीत की जिंदगी में मजा नहीं आता। तो आपकी इस दोपहर का स्वाद बढ़ाने के लिए मैं लेकर आई हूँ सुरों का सबसे बेहतरीन जायका, जो आप आज हमारे साथ तड़के के बीच में खाएंगे। वैसे आज हमारे पहले तड़के की तो थीम थी, वो तो हमारे बेकरार दिल अफगान जलेबी के साथ शुरू हुई, लेकिन अभी भी और भी बाकी है गीतों की लड़ियों में प्रिया सरिया और दिव्या कुमार के साथ। सुनते हैं ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, हवाओं में घुली है आज यादों की एक महक पुरानी। चलो फिर से सुनते हैं सुरों की वो एवरग्रीन कहानी। वैसे दोस्तों, हमने आपको अभी अभी सुनाया था एबीसीडी टू का ये गीत, जिसे गीत गा रही थी मयूरपुरी, यानी कि गीत के जो शब्द थे मयूरपुरी के लिखे हुए थे और संगीत से आया था सचिन जिगर ने, जो कि सच में एक उभरते हुए कलाकार है और लोगों को बेहतरीन ढंग से पेश कर रहे हैं अपने गीत को, प्रिया सारिया और दिव्या कुमार। वैसे दोस्तों, लड़ियों की घड़ियों में आज तड़के में तड़के बज रहे हैं और वैसे दोस्तों, शाम की चाय का तो वक्त हो ही रहा है। आप चाय के साथ अगर यादों का तड़का भी लगाना चाह रहे हैं तो मेरे साथ यूं ही बने रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

0: जी हाँ दोस्तों, अमाल मलिक और पलक मुचल की इस शानदार आवाज में क्या जादू था, वो तो आप इसमें घुल ही गए होंगे। वैसे हीरो फिल्म का ये गीत था और कुमार ने इस गीत के बोल लिखे थे और अमाल मलिक ने स्वयं इस गीत की वो सजाया था। वैसे दोस्तों, अभी तीन का तड़का में हम समय हो चला है 3:18 और चाय पीते पीते आपको परियोजना प्रस्तुति में हम क्या होता है प्रधानमंत्री की योजना में से एक योजना आपको चलिए सुनाए देते हैं।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: जी हाँ दोस्तों, पीएम सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना आज हम परियोजना प्रस्तुति में इसी विषय पे आधारित आपके लिए हम ये बात कहेंगे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कि एक बेहद समकालीन तकनीकी और पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली ये इस प्रकार का हमारा प्रस्तुति है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को बेहतरीन ढंग से प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है। वैसे योजना का परिचय हम आपको बता दें कि इसका आधिकारिक नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और इसके मंत्रालय नवीन और नवीकरण योजना मंत्रालय यानी कि MNRE से जुड़े हुए हैं और इसका कुल बजट 75,021 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता है। मुख्य विजन 1 करोड़ घरों की छतों पर यानी कि रूफ टॉप पर सोलर पैनल स्थापित करना है और इसका मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या होगा इसे भी जानना बेहद आवश्यक है। इस स्लाइड

0: हम योजना के तीन सबसे बड़े फायदे को हम बताएंगे कि मुफ्त बिजली यानी कि पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि घर में जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है तो इसे नेट मीटरिंग के जरिए सरकारी ग्रिड को बेचकर लोग पैसा कमा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला पर निर्भरता कम करके भारत के नेट जीरो पर्यावरण लक्ष्य को हासिल करना और कार्बन उत्सर्जन में कमी करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वैसे इस प्रोजेक्ट वित्तीय मॉडल दिखाने के लिए अगर हम आपको बात करें तो ये सोलर सिस्टम है और इस किस परिवार के लिए है ये भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे 1 किलोवाट लगभग 30,000 और इसमें हमारी उपयुक्त औसत मासिक खपत होगी 150 यूनिट। उसके साथ 2 किलोवाट लगभग 60,000 के अतिरिक्त में आएगा और 3 किलोवाट अधिकतम 78,300 यूनिट से अधिक जिसको बिजली पेश की जाएगी। वैसे ये योजना पूरी तरह से पारदर्शी है जो इसकी तकनीकी मजबूती को दर्शाती है और उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर बिजली बिल और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल पर मौजूद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोलर वेंडर का चुनाव भी किया जाता है और वेंडर द्वारा पैनल इंस्टॉल करने के बाद बिजली डिस्कॉम नेट मीटर लगाती है यानी कि DBT काम पूरा होने के 45 से 90 दिनों के भीतर सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में आ जाती है और अपनी जो योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार का अंतरिम लक्ष्य इसे और भी रफ्तार देना है। अब लगभग 40 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम देश में इंस्टॉल किए जा चुके हैं और सबसे बड़ी सफलता यह है कि देश के 18.9 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य आ रहा है।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, देखते देखते वक्त कैसे बीत रहा है हमें पता भी नहीं चलता और आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। लेकिन दोस्तों वादा है कि हम कल 3 बजे फिर आपके पास हाजिर होंगे। लेकिन इसी के साथ आपको 3:30 बजे हम आपको अगले कार्यक्रम यानी कि उमंग में आपको लिए चलेंगे, जो कि हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। और अभी मैं आपके लिए ये गीत छोड़े जा रही हूँ आदिति सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में फिल्म 2 स्टेट्स से। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानी श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
3: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
2: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
3: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
2: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
3: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
2: जी
3: श्रोताओं आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
2: लब्ध प्रतिष्ठ।
3: इसका अर्थ है
2: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
3: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
3: श्रोताओ आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक

0: खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
1: ये कार्यक्रम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही।

0: लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
2: चलो
3: अरे
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
2: चलो चलो चलो चलो
5: अरे
2: पकड़ो
5: चलो चलो मुझे
6: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
2: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया। ये
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
8: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
4: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
4: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
4: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
4: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
4: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
4: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
0: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
8: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
4: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
3: सर सर ये टेलीग्राम।
8: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
3: क्या हुआ सर?
8: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
3: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
8: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
3: यानी आपका प्रयोग सफल रहा?
8: हाँ चार्ल्स।
4: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
8: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
8: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।

0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
1: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना,
6: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: আকাশবাণী কলকাতা এফএম রেনবো প্রচার তরঙ্গে এই মুহূর্তের খবর পড়ছি নমামি বসু রুদ্র। রাজ্যসভায় আজ পাবলিক এক্সামিনেশনস প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2026 পেশ করা হয়েছে। দুপুর 2টোর পর অধিবেশন শুরু হলে কর্মী, জন অভিযোগ ও পেনশন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিলটি পেশ করেন। রাজ্যসভার অধ্যক্ষ সিপি

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और गीतों के बहाने दिल बहलाने का ये शो 107 एफएम रेडियो पर मैं रिंकू आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। और हम अभी आए हैं छायालोक के गीतों के साथ, उन सभी गीतों के साथ पिरोने जिसको आप याद कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम अपने गीतों के माध्यम से आपके दिलों पर छा जाए। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये कार्यक्रम।
0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: नजारा फिल्मों का,

मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह कितनी है ये सिर्फ दिल ही दिल को जानता है। दोस्तों, इन खूबसूरत गीतों की सुरीली धुनों में आज हम हर गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये 107 एफएम रेनबो है और गीतों का कार्यक्रम छायालोक है, जिस पे हम नजारे फिल्मों को पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आइए एक से एक बढ़िया बढ़िया गीत अभी सुनते हैं सुखविंदर सिंह के साथ अलका याग्निक जी को।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक जी को। वैसे तो मौसम है हसीन और हवाओं में एक सुरूर है, इन प्यार भरे गीतों का कुछ ऐसा ही फितूर है। एक हाथ में आपके हो सकती है चाय और कानों में ये धुने जोर कर रही है। लेकिन दोस्तों, मैं दूर बैठी हूँ आपसे, लेकिन फिर भी मैं आपके पास ही हूँ। आइए सुनते हैं बिच्छू फिल्म से रामशंकर, शंकर महादेवन और राज भी की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, बिन बोले ही दिल ने हर बात कर ली, धड़कनें बहक गई उनकी एक मुस्कान पर और इस दिल ने मोहब्बत की शुरुआत कर ली। दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बिच्छू से राम शंकर, शंकर महादेवन और राज भी की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत से सजाया था आनंद राज आनंद ने। आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर छह लोक रिंकू के साथ और यूं ही बने रहिए। इस बीच सुर निगम की आवाज में पेश है ये गीत।

दोस्तों, सच्ची मोहब्बत कभी लफ्जों की मोहताज नहीं होती है। ये वो धड़कन है जिसकी कभी आवाज नहीं होती है, जो बस जाए एक बार रूह के अंदर आकर, उस पाक चाहत की कभी भी कोई अंदाज नहीं होती है। दोस्तों, श्रीनिवासन की आवाज में दिल जाता है फिल्म से जावेद अख्तर की लिखे हुए बोल शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजी हुई ये गीत आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, वैसे तो श्री डिमाशन की आवाज़ ही मखमली जैसी इस तरह से छाई है कि दिल ज़्यादा है फिल्म में हम भी उन्हीं गीतों के साथ उन्हीं के साथ रूबरू होते चले गए थे। वैसे उनकी राहों में उनकी बाहों में हर तरह से शंकर महादेवन और साथ में जो गीतकार थे वो भी बहुत ही बढ़िया उन्होंने गीत गाया था और इसके साथ ही उन सभी गीतों को हिट कराने में उन शंकर महादेवन और उनकी सारी टीम को बहुत ही ज़्यादा इस भावना के साथ उन्होंने पिक्चर बनाई और बहुत ही ज़्यादा शायद उन्होंने बहुत मेहनत की तभी जाके इस फिल्म में बहुत ज़्यादा उम्र के हीरो हीरोइन होने के बावजूद ही पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट हुई। तो से दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:37 हो चुके हैं और 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं छाया लोग रिंकू के साथ। यूं ही बने रहिए क्योंकि अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में अगला गाना है तैयार।

जी हाँ दोस्तों, वैसे तो स्टूडियो की घड़ी में 7:42 हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी एक और विशेष कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से जाएगा, लेकिन इससे पहले एक गीत आपके लिए सुनाई देती हूँ।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on India's new labor codes by Dr. Pradeep Kumar Jena, Director, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम, लेकिन एक भाग और है और 8 बजे आप सुनेंगे अमरनाथ भट्टाचार्य जी की आवाज में हमारा शो। आइए, अब तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।
3: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो, छाया लो।

हाँ भाई राजू, आवारा बरसात में चोरी चोरी दिल तो दे बैठा, पर ज़्यादा बरसात में भीगने से सर्दी लग गई और शायद पता नहीं था, इसलिए चोरी चोरी दिल लेने के बाद से बेचारा राजू परेशान है और कोई एक प्याली गर्म चाय तक देने के लिए नहीं मिला बेचारे राजू को। फिलहाल 8:12 आप हैं अपने रेडियो वाला दोस्त अमर के साथ ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक छाया लोक के दूसरे भाग में सुनते रहिए।

जी हाँ, बात तो बराबर है, साथ चलने से सफ़र कट जाता है, कोई साथ रहे तो सफ़र कट जाता है। जी हाँ, सावन भी शुरू हो चुका है और बारिश का मौसम है। बारिश है कि कब झमाझम शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, आजकल में बारिश भी, यानी कि आजकल तो बारिश भी एरिया वाइज बरसती है ना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं और आपको किसी ने बुलाया है, या किसी के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, मिलने जाना है, आपने उन्होंने कॉल किया, मोबाइल, अभी तो मोबाइल का युग है, मोबाइल पर फ़ोन किया कि भाई कहाँ हो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि यहाँ बारिश हो रही है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ। और उधर वो सोचेगा, अरे यहाँ तो काफ़ी धूप है। वो बोलेगा, नहीं इधर तो धूप है। अब सोचिए आप किस विडम्बना में पड़ने वाले हैं। ऐसे में सहारा कोई है तो 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

संभालिए संभालिए अपने दिल को, वरना ये भाग जाएगा भाई। 20:35 यानी 8:35। अच्छा, कैसा लगता होगा, आप अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, बस निकलने ही वाले होंगे, और बरसात की धुन सुनाई दी, बिजली कड़कने ही लगी और फिर झमाझम बारिश, मूड ऑफ है ना, काम पर पहुंचने में देरी। अच्छा लगता है उस वक्त की बारिश, तब वो खलनायक बन जाता है ना। सुनते रहिए, सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन। छायलों के दूसरे भाग में आपके साथ आपका रेडियो वाला मैं अमर।

0: नाम किसी का भी हो, बरसात आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं दोस्तों। पता नहीं अभी भी बाहर बारिश हो रही है या नहीं, मैं तो स्टूडियो के अंदर में हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। बट हाँ, इतना है कि मैंने जैसा कि जिक्र किया कि आप निकलने वाले हैं और बरसात की धुन सुनाई दे दी है, तो आपका मूड तो अपसेट हो ही जाता होगा, है ना। तो मेरा कहना यह है कि आप थोड़ा टाइम हाथ में लेकर निकले, और अगर बाइक या गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा सावधानी से चलाएं, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट जरूर पहने।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं।
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

जिसके आने। जी हाँ, जिसके आने से रंगों में डूब जाती है शाम, वो शाम अब निकलने वाली है क्योंकि 9 बजने वाले हैं और शायलो का वक्त खत्म होता जा रहा है। फिलहाल आप रहिए क्योंकि हमारे बाद भी प्रोग्राम है, आप बने रहिए 107 FM रेनबो के साथ और अपने दोस्त अमर को दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही।

0: लड़की होगी।
1: मैंने जो कह दिया लड़का होगा तो लड़का ही होगा।
0: भई मैं जो कहती हूँ लड़की होगी।
1: ओहो भाभी अब तुम ही समझौता कर दो।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,